0: Probe continues in the Delhi fire tragedy, which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज की। तो जब हमने देखा हालात खराब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और
1: कि
2: उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी देर टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
1: बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की
2: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल वाज द नॉन इंटरव्यू क्रूज स्पेंड सम टाइम विद हिम वी हैव दीज व्हिसल्स आउट फॉर यू एंड द व्हिसल्स आर फॉर द फैक्ट दैट यू गॉट द पोल राइट व्हिच इज क्वाइट फैंटास्टिक
3: वी सॉ यू कैंपेनिंग मैम फॉर द आरजी कॉल विक्टिम्स मदर एज वेल यू नो दैट वाज अ टेलिंग मोमेंट डू यू बिलीव दैट इंसिडेंट इन सम वेज was a tipping point.
4: I think that Shiv was not the only incident.
5: Tobe poran khule toy mukh phute tor moner kotha ekla bolo re jodi tor dag shune kyo na ashi tobe ekla cholo re.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: Across the country,
9: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
1: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
3: वी हैव बीन फाइटिंग नॉन स्टॉप, वी आर नॉट स्टॉपिंग अंटिल द जस्टिस इज सर्व्ड।
4: मिसिंग, वेयर इज योर सन? लेट मी आस्क यू दैट।

0: सारा
1: बंगाल बचाने का वोट।
2: फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर एवरी वुमन हियर।
3: व्हेन इट वाज एनीथिंग बंगाल, यू ट्यून्ड इन ओनली टू एनडीटीवी। दिस जीओजी सिलेक्शंस एनडीटीवी।
4: साइज ऑफ फिश, व्हाट टेस्ट ऑफ फिश यू लाइक।
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स, योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज, इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, weeknights on NDTV Profit.
2: We've landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pawan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were

0: भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया संकटों में गिरी हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं।
1: Shaped by heightened uncertainty, disruptions to key trade routes and supply chains, increased market volatility, and cautious business sentiment. Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain.
2: With the growth outcome, it only confirms what we believed on February 27 that the Indian economy was actually in a pretty strong Goldilocks situation, with good growth, moderating inflation, and the fiscal deficit coming down, etc. So these numbers show that there is an underlying strength and resilience to India's macroeconomic trends, and we are heartened to see that the high frequency data have confirmed that this momentum has continued into the new financial year so far, notwithstanding the global uncertainties we face.
3: राहुल गांधी ने बोला था कि इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, वही इकोनॉमिक सुनामी तो आ गई। जो लेटेस्ट जीडीपी के आंकड़े आए उसके हिसाब से 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% से ग्रो करी थी। इट्स द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मोर देन 7% कंटिन्यूइंग टू बी द फास्टेस्ट। अब इसको कंपेयर करिए जापान लेस देन 1%, चाइना इससे भी कम, G7 का एवरेज 1.6-1.5%, मतलब जितनी बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे 1% से कम की एवरेज ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हिंदुस्तान में
4: Hello and a very good afternoon. You're watching NDTV with me, Aditya Raj Kaul. Let's get to the top headlines on this Saturday afternoon. India's latest GDP numbers have ignited a fierce political showdown. The government is celebrating robust growth and projecting India as the world's fastest growing major

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: डीके शिवकुमार बिंबा ऐसे राजा नाम हो
4: द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर डीके शिवकुमार विद अस सर। हाउ डू यू वांट टू रियली रीशेप द सिटी एंड द स्टेट्स?
5: द एंटायर कंट्री इज वाचिंग अस। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज अश्योर्ड अस दैट यू कोऑपरेट।
6: Today we are asking the question, what does India think about the political direction in which the country is going? 62% of TMC voters do want Mamata Banerjee to continue. 65.8% of BJP voters think

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. I am Mayank Chaudhary and this is Limelight. In a dark crime comedy storyline, Bollywood superstar Madhuri Dixit is coming to Netflix. My friend Abira catches up with the cast of Maa Behen. Take a look.
1: Maa Behen, hum gaali nahi de rahe hai aaj. We are here to talk to the cast and, you know, for a 90s kid, everything feels very nostalgic in this film. The way they dress up, the name, everything, even the frames, it's so nostalgic. I am a 90s kid and having Madhuri Dixit in front of me, it's always...
2: No.
1: And you are special because hum Bihar se hai aur aapke bagair hum Bihar Bihari nahi feel karte. Let's start with you. You know, to be in our world, how does it feel?
2: Oh, it was wonderful. I mean, we were in a amazing world created by Suresh and Pooja Tolani. And I'm so proud to be part of that world because we've created some crazy moments, some wonderful moments. This is like a, you know, most dysfunctional family you will ever find. And the mother is like a rule breaker. She is very strong-headed. She is someone who, you know, lives in a society where she's getting judged all the time. But she has these two kids and kuch something happens in the house. There's a car lying right there. Have you seen that?
1: I am guessing you're blown away by the script.
2: Oh yes, I loved it. I love my character. I love all the characters in the movie. And I thought that it was a very well put together film. I mean, every character has conviction in the, and like you said, the bhasha.
1: Yeah.
2: It's very different, it's lyrical. You know, aise jhagda bhi karte to aise lagta hai ki pyar se baat kar rahe hain. Lekin hum log kaafi jhagda karte hain.
1: Tell me one thing. When you are surrounded by actors, professional actors, you have a director telling you, is it intimidating?
3: It was not. On this set because they all made me so comfortable at home. So, mujhe initially, like ma'am said, workshop se hi first day, main comfortable thi dono ke saath. It was never ki main yahan pe out of place feel kar rahi ya kuch. And even with Suresh sir, the way he treated me day one se, everybody on set, ek hota hai na ki sab achhe log ek saath hain. Hamare jo DOP sir hai, Anuj sir, Pooja ma'am, Ravi sir, Tripti, एवरीबडी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सच में
1: कांड करने में मजा आया
3: और वो जो टाइटल है ना वो ये नहीं लग रहा है कि हम वो फील नहीं कर रहे हैं. वो फीलिंग है कि एक घर के अंदर ही है. एक्चुअल वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं. एक माँ है जो प्रोटेक्ट कर रही है मुझे ऑफ स्क्रीन भी. एक बहन है जो मुझे सिखा रही है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है. और उसके साथ सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में और इतनी पेशेंस और सपोर्ट के साथ. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी फर्स्ट टाइम एक सेट पे होना. बट इतने अच्छे लोगों के साथ तो मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं हुआ एक भी सेकेंड. और मेरा इतने ड्रीम टीम
1: एब्सोल्युटली. बट यू नो you're a content creator, you know how to deal with trolls and comments. But a lot of people say, this is to you also, a lot of people say, you know, nowadays content creators are just becoming actors and the directors are taking them because of their followers. Is that true? And how do you deal with such comments when it comes to you? You know, ye influencers kyun ban rahe actors?
4: I think that's what she's been dealing a lot in the last
1: few years.
4: But I'll be very honest, it's very unfair. मेरी फिल्म में माधुरी दीक्षित है. मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्मॉल ट्रिक्स. तृप्ति डिमरी है, रवि किशन है. आई डोंट नीड दोस. सो प्योरली हैज बीन कास्ट फॉर द पार्ट. एज सिंपल एज दैट.
1: एंड हाउ आर यू डीलिंग विद द ट्रोल्स?
3: आई एम जस्ट इग्नोरिंग देम बिकॉज उनको जो बोलना है बोले. मैं तो अपना ड्रीम जी चुकी हूँ. जी रही हूँ.
1: ये काम रवि जी, यू नो, to be cast opposite Madhuri Dixit.
5: Oh God. पहले तो मुझे लगा था how I'm going to perform, how I will.
1: You also think like that?
5: Yeah, yeah. Because see, मैंने
4: इनसे
5: कभी मेरी रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई थी. माधुरी मैम को पर्दे पे देखे थे. बाद में ऐसा कहीं टकराव नहीं हुआ था. और सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स, जरा भी आसान सीन नहीं. इनके साथ मेरे बहुत ही ना मैंने वैसे कैरेक्टर कभी किए, ना मैंने माधुरी मैम को वैसे किरदार में कभी देखा. ऑल थैंक्स टू सुरेश त्रिवेणी जी की. और कुछ भी, माधुरी मैम को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है और उस दुनिया में रहती हैं कैसी खोई रहती हैं. इनकी आँखों में देखना बहुत दूर तक देखती हैं वो, पता नहीं कितने दूर जाती हैं. आई स्टिल कोई मतलब किधर तूफान हुआ, किधर आग लगी, मैंने बोला इधर ये हुआ. आई टू टेल हर एवरीथिंग यू नो. ये वो ऐसे हाँ या
1: It's
0: playful, it's flirty, it's exotic. Feathers have made a huge comeback in fashion, from Aishwarya Rai at Cannes to Beyoncé at Met Gala. From runways to the red carpet. I catch up with the OG queen of feathers in Indian fashion, designer Pallavi Mohan.

0: for India, and opposition even gave out dire warnings about India's economic situation. However, global comparative figures show India has shown strong fundamentals compared to major economies of the world, with the RBI governor reaffirming that India is better prepared to deal with global headwinds.
1: भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है. यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है. भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं, और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है. कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है. गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है. वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, 7.7, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8. और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है. दुनिया संकटों में गिरी हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है. वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं.
2: Shaped by heightened uncertainty, disruptions to key trade routes and supply chains, increased market volatility, and cautious business sentiment. Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain.
3: With the growth outcome,
4: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Expelled TMC leader Ritabrata Banerjee speaks to managing editor Padmaja Joshi, challenges Mamata Banerjee to a floor test, claims that she has the support of 61 MLAs. Prime Minister chairs Economic Advisory Council's meet. Discussions focused on reforms aimed at improving ease of living and ease of doing business across sectors. Meeting also assessed the impact of West Asia conflict of India and the global economy. India's latest GDP numbers have ignited a fierce showdown. Centre celebrates robust growth as world's fastest growing major economy. Prime Minister accuses critics of undermining the vision of Atmanirbhar Bharat, while BJP hits back at Rahul's comment that spoke of an economic tsunami. And fresh turbulence rocks Karnataka government, a cabinet resignation, growing discontent among ministers and a portfolio allocation row have put the Congress leadership on the defensive. DKS says all issues will be resolved. BJP calls it a government in crisis. Nepal Foreign Minister Sisir Khanal, speaking exclusively to NDTV, said India and Nepal are working to reset ties and revive the pending agreements, with both sides exploring common ground on key issue. Reiterating Kathmandu's commitment, he said Nepal will not only allow its territory to be used against India, the outreach signals a potential thaw and a fresh diplomatic push.
5: Nepal's border, Nepal's land would not be used by anyone else against Indian national security interest.
4: The BCCI selectors have announced the squad for the upcoming Ireland and England T20 series, with Shreyas Iyer taking charge as the captain. Surya Kumar Yadav finds himself out of the squad, and teen sensation Vaibhav Suryavanshi gets the big call up.

0: Nowadays, content creators are just becoming actors, and the directors are taking them because of their followers. Is that true? And how do you deal with such comments when it comes to you? Ye influencers kyun ban rahe actors?
1: I think that's what she's been dealing a lot in the last few years. But I'll be very honest, it's very unfair. Meri film mein Madhuri Dixit hai. मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्मॉल ट्रिक्स. तृप्ति डिमरी है, रवि किशन है. आई डोंट नीड दोस. सो प्योरली हैज बीन कास्ट फॉर द पार्ट. एज सिंपल एज दैट.
0: एंड हाउ आर यू डीलिंग विद द ट्रोल्स?
2: आई एम जस्ट इग्नोरिंग देम, बिकॉज उनको जो बोल रहे हैं बोले. मैं तो अपना ड्रीम जी चुकी हूँ. जी रही हूँ. भाग
0: ये काम. रवि जी, यू नो, टू बी कास्ट ऑपोजिट माधुरी दीक्षित.
3: ओ गॉड. Yeah. पहले तो मुझे लगा था हाउ आई एम गोना परफॉर्म, हाउ आई विल.
0: यू आल्सो थिंक लाइक दैट?
3: या या, बिकॉज़ सी, मैंने इनसे कभी मेरी रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई थी. माधुरी मैम को पर्दे पे देखे थे, बाद में ऐसा कहीं टकराव नहीं हुआ था. और सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स, जरा भी आसान सीन नहीं. इनके साथ मेरे बहुत ही ना मैंने वैसे कैरेक्टर कभी किया, ना मैंने माधुरी मैम को वैसे किरदार में कभी देखा. ऑल थैंक्स टू सुरेश त्रिवेणी जी. और कुछ भी, माधुरी मैम को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है और उस दुनिया में रहती हैं, कैसे खोई रहती हैं. इनकी आंखों में देखना, बहुत दूर तक देखती हैं. वो पता नहीं कितने दूर जाती हैं. आई स्टिल कोई मतलब, किधर तूफान हुआ, किधर आग लगी, मैंने बोला इधर ये हुआ. आई टू टेल हर एवरीथिंग, यू नो. ये वो ऐसे हाँ या
4: It's playful, it's flirty, it's exotic. Feathers have made a huge comeback in fashion, from Aishwarya Rai at Cannes to Beyoncé at Met Gala. From runways to the red carpet. I catch up with the OG queen of feathers in Indian fashion, designer Pallavi Mohan.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: India's unshakable news habit.

0: हेलो चुप चुप,
1: एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
2: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है, उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
3: And BJP chief Nitin Naveen issued a strong statement hitting out at the CJP protest. Naveen asserted that forces sitting abroad cannot dictate to the India's youth and emphasized that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
4: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को, डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
3: Just days after the formation of the new Karnataka cabinet, Chief Minister D.K. Sivakumar is facing the challenge of managing the discontent within his own team. The most serious flashpoint came from senior Congress leader Ramalinga Reddy. While the crisis was diffused following late-night talks with the Chief Minister, it has drawn attention to the wider unease within the cabinet. We learned that the minister briefly tendered his resignation after expressing dissatisfaction with being allotted the irrigation portfolio instead of the Bengaluru development portfolio he was reportedly seeking.
5: Shri D.K. Sivakumar, Shri B.K. Hariprasad, Shri Siddaramaiya, and myself, we all spoke to him, all four of us. There was some, apparently some misunderstanding. He again met Shri B.K. Hariprasad, me, and Shri D.K. Sivakumar, Shri Siddaramaiya. He has already, I think, told you that he has withdrawn his resignation. There was some misunderstanding, and he shall continue to work as a loyal soldier and minister of the party.
6: I am happy, no problem. We met Rahul ji, Surjewala ji, Venugopal ji. They will start.
7: Yeah, but position is different, sir.
6: No problem.
7: You are happy, sir.
6: See, no. Rahul ji has told I will start it up.
3: Meanwhile, yesterday, Prime Minister Narendra Modi said that Congress replaced Karnataka Chief Minister Siddaramaiah due to growing public anger against the party's government. Listen.
8: Karnataka ki janta mein bhi Congress sarkar ko lekar ke bahut aakrosh hai. Aur yahi karan hai ki Karnataka mein bhi Congress ko CM badalna pad raha hai.
3: It's yet another setback for AIADMK as the party continues to grapple with a steady stream of defections following its electoral defeat. In the latest blow, former ministers MC Sampath, Kadambur Raju, along with several party functionaries, reached the TVK headquarters and joined Vijay's party. Their move comes amid a growing exodus of AIADMK leaders and cadres to TVK in recent week. Leaders who backed the TVK government during the assembly floor test are now formally joining the ruling party. The latest defections are expected to further strengthen TVK's organizational base while raising fresh questions over AIADMK's ability to retain its senior leadership and the Carter strength. So, absolute monsoon mayhem has gripped parts of Kerala. The IMD has issued a red alert for three districts of northern Kerala as extreme rainfall has triggered widespread destruction, flash floods and severe waterlogging. In Kottayam, torrential downpours weakened the structures across the district. Visuals show a massive compound completely collapsing. In Kasargod, a school compound wall came crashing down. Moving up to North Kerala, Kozhikode faced the brunt of the storm. High velocity winds coupled with extreme rain ripped through the commercial areas, heavily damaging multiple shops and bringing local businesses to a complete standstill. We'll keep a track of that story and much more. For now, slipping into a very short break. Stay tuned.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
9: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
10: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
8: How will you celebrate?
9: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
11: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
12: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
13: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
8: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
14: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
15: I think that was not the only incident.
16: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
17: ইকোনমি, বিজনেস, ওয়ার্ল্ড, টেকনোলজি, নয়েজ ফিল্টার্ড, নাম্বারস ডিকোডেড, ইনসাইটস দ্য রিওয়ায়ার ইয়োর ওয়ার্ল্ড ভিউ, ফ্রম গভর্নেন্স টু গ্রোথ, উই কানেক্ট দ্য ডটস, ইয়োর ডেইলি এজ, ইয়োর গ্লোবাল অ্যাডভান্টেজ। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
18: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
19: Launch control, 0 to 100.
20: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
21: This car makes no sense, yet it makes every sense.
22: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
20: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
23: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
24: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, on Saturday.
23: The show that sets the prime time agenda.
24: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
23: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
1: एंड बीजेपी चीफ नितिन नवीन इशूड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हिटिंग आउट एट द सीजेपी प्रोटेस्ट। नवीन असर्टेड दैट फोर्सेस सिटिंग अब्रॉड कैन नॉट डिक्टेट to the India's youth and emphasize that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
2: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को, डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
1: Just days after the formation of the new Karnataka cabinet, Chief Minister D.K. Sivakumar is facing the challenge of managing the discontent within his own team. The most serious flashpoint came from senior Congress leader Ramalinga Reddy. While the crisis was diffused following late-night talks with the Chief Minister, it has drawn attention to the wider unease within the cabinet. We learned that the minister briefly tendered his resignation after expressing dissatisfaction with being allotted the irrigation portfolio instead of the Bengaluru development portfolio he was reportedly seeking.
3: Shri D.K. Shivakumar, Shri B.K. Hariprasad, Shri Siddharamaiya and myself, we all spoke to him, all four of us. There was some, apparently some misunderstanding. He again met Shri B.K. Hariprasad, me and Shri D.K. Shivakumar, Shri Siddharamaiya. He has already, I think, told you that he has withdrawn his resignation. There was some misunderstanding, and he shall continue to work as a loyal soldier and minister of the party.
4: I am happy, no problem. We met Rahul ji, Surjewala ji, Venugopal ji. They will start.
5: Yeah, but position is different, sir.
4: No problem. See, no, Rahul ji has told, I will start it up.
1: Meanwhile, yesterday, Prime Minister Narendra Modi said that Congress replaced Karnataka Chief Minister Siddaramaiah due to growing public anger against the party's government. Listen.
6: Karnataka ki janta mein bhi Congress sarkar ko lekar ke bahut aakrosh hai. Aur yahi karan hai ki Karnataka mein bhi Congress ko CM badalna pad raha hai.
1: It's yet another setback for AIADMK as the party continues to grapple with a steady stream of defections following its electoral defeat. In the latest blow, former ministers MC Sampath, Kadambur Raju along with several party functionaries reached the TVK headquarters and joined Vijay's party. Their move comes amid a growing exodus of AIADMK leaders and cadres to TVK in recent week. Leaders who backed the TVK government during the assembly floor test are now formally joining the ruling party. The latest defections are expected to further strengthen TVK's organizational base while raising fresh questions over AIADMK's ability to retain its senior leadership and the cadre strength. So, absolute monsoon mayhem has gripped parts of Kerala. The IMD has issued a red alert for three districts of northern Kerala as extreme rainfall has triggered widespread destruction, flash floods and severe waterlogging. In Kottayam, torrential downpours weakened the structures across the district. Visuals show a massive compound completely collapsing. In Kasaragod, a school compound wall came crashing down.

0: See, Kunal Ghosh has a habit of speaking four things in a single day. So a man who speaks four things or five things, in the morning he says something, in the afternoon he says something, in the late afternoon something, in the quick evening something, in the late evening something. So it's a wastage of time to speak about what Kunal Ghosh has tweeted.
1: He's not among the 61 with you.
0: Not at all, no question.
1: Okay.
0: Even if he wants to sign, we won't allow.
1: There are reports that tomorrow there are many MPs who are going to come to Delhi, that they could give a letter to the Lok Sabha Speaker.
0: See, yesterday Bengali media was asking me when I came out of the assembly. I told them that for the last 7 to 10 days I was not in a condition to speak with any of my former colleagues in the parliament, Trinamool Congress colleagues. Then yesterday I attempted to call a few of them, 4 or 5 people I attempted to call. But incidentally, everybody's phone was switched off, or either switched off or not reachable. So I could not get a chance. Today, maybe in the evening time, late evening or in the night, I will try to call up a few more MPs. If I have a chance to speak with them, then probably, maybe I can get some idea of what is going to happen in Delhi in the next few days.
1: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Ritabhata Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
0: Might be. They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or to. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: कल था उनका एनिसिपेटरी से बेल फाइल
4: जी
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न नहीं कोई उन पर आरोप भी नहीं डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन पहला केस इनके द्वारा किया गया इनके पर जुर्माने स्टाफ के द्वारा एफआईआर किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है एड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद एफआईआर कर दी
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
5: तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है मैं इसका कद्र करता हूं मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें सफलता जरूर मिलेगी मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है नागरिकों का कर्तव्य है तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे